0: Hei hei, Akash, fani ai zol FM zo o za point pasari atanga puan chua ani bu in ni som pani tharuk sang ni som ni paruk zir top ni kan hun voi khatna chu kan lo chan ta a minga la tu zong zong te chebe kan buk chewa ni chatak mang turin du sakna kan hlan cheu program puang tu hi vanal ngei zwali kani a control room engineer duty KVL ruata ani vuina kan thupui atan inbuat se lok na cha inei chuan achan ve zawa in ngai ro inbuat se lok na cha inei chuan azat ve zawa in ngai ro ti ani a ama saberin hindi tonga pathian pakna hla ngai la hawin bul kan chan dona ti chuan vuina kan hun khar nan zai rimoi mizolap song mang in kan hun kan khar don ani
1: नमस्ते श्रोताओ, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने, जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।
0: नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी प्यारे दोस्तों को, आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM ज़ोय 100.7 दोस्तों, और हिंदी के मसीही खंड में आपके साथ जुड़ी है आप सभी के लिए RJVLE, और हम आप सभी का स्वागत करते हैं हिंदी के खंड पे दोस्तों। और आप सभी कैसे हैं, और हमें आप सभी के प्यार भरे संदेशों का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। और यस, अगर आपको समय मिलेगा तो आप ज़रूर आइएगा FM ज़ोय 100.7 पर, हमें सुनिएगा, ठीक है। और आपको वक्त मिलेगा तो हमें संदेश भेजना मत भूलना, ठीक है। यस, और हम चाहते हैं कि आप सभी का आज का दिन अच्छे से बीते, खुशियाँ और आनंद से, और कल रात की नींद भी आप सभी ने अच्छे से ली होगी, और आज की सुबह भी आप सभी ने अच्छे से पाया होगा, देखा होगा, और शुरुआत भी अच्छे से की होगी। यस, और आप सभी ने अपने आज के इस दिन की शुरुआत एक मुस्कुराहट के साथ तो ज़रूर की होगी। अगर अभी तक नहीं की है तो आप कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत ही खुशनसीब इंसान है दोस्तों। यस, हमें दोबारा यीशु मसीह ने हमें नया दिन दिया, नया जीवन दिया दोस्तों। तो आइए आज हमारे हिंदी के मसीही गीतों के खंड में हम आपको सुनाने वाले हैं विजय गीत मंडले जम्बोक के गाए हुए गीत, और पीला नुनमोया एंड पार्टी के आवास में गाया गीत, मसीही गीत, और द विश्वासी के आवास में बहुत ही खूबसूरत गीत हम आपको इस खंड में सुनाएंगे। तो चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइए, और मैं सबसे पहला इस खंड का शुरुआती गीत आप सभी प्यारे दोस्तों को सुनाना चाहूंगी, विजय गीत मंडले जेमबोग की तरफ से मसीही गीत मेरी तरफ से आप सभी के लिए, और ढेर सारी बातें हम करते जाएंगे। तो लेकिन हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि आपने अपने दिन की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ ईश्वर को धन्यवाद देते हुए शुरुआत की है या नहीं। यस, अगर आपने अभी तक नहीं की है तो आप यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सुनते हैं विजय गीत मंडले जम्बोक की तरफ से मसीही गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

तो ये जो गीत आप सभी ने अभी जो सुना था, इबादत करो पीलन उन्मोया, और यस पीलन उन्मोया एन पार्टी की तरफ से गाया हुआ मसीही गीत इबादत करो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। दोस्तों, अब हम गीत की तरफ चलने से पहले आपके भेजे गए संदेश की तरफ हम चलना चाहेंगे। और यहाँ पर इस खंड में सबसे पहला संदेश आया है ओमेगा सांगतेया की तरफ से, और ओमेगा सांगतेया ह्यान कंग इजुआल तुक थर दु सकना चिबे वोइन चिसेल ना छा लोनेला लोहिमला मिदंगता नामल सोमना निचुंग जेलिन हुनमंग हुनमन नुआमले अरोनती आ कलोम ले मे ओमेगा सांगतेया आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आप भी अच्छे से अपना समय बिताना, और आपको अगर समय मिलेगा तो हमसे बातें करने के लिए आप ज़रूर संदेश भेजिएगा, ठीक है। यस, और मेरे दोस्त जामा यस की तरफ से संदेश आया है और उन्होंने लिखा है कि हेलो आरजे वी, नमस्ते सुप्रभात। यस, आपको भी सुप्रभात साम। ओ और एफएम ओ 100.7 सुनने वाले सभी प्यारे श्रोताओं को, दोस्तों को हमारी तरफ से, आरजे वेली की तरफ से सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल।

hun in loh man thei nan tuang taka hun in loh man thei nan tu sak na kan lan mol mol chaw ni ti kha lo shat sak bok ula ming moi te hian banal namaste duty no am le ron ti boka yes am ko pi namaste ming moi te a oh it's or yes hum chahte hain ki aap ka bhi din acche se bite yes or hitende das asam or ngakte pa bil ko thir elara mamit ki taraf se sandesh pahuncha hai lekin main in doston ka sandesh agle geet ke sunane ke baad padhna chahungi pyar ka sagar the bishwasi ke awaz mein gaya geet masihi geet sunana chahungi aur doston kabhi mat bhulna ki hum bahut khush naseeb hain doston yes मतलब हम बहुत खुश नसीब हैं दोस्तों कि हमें अच्छा दिन मिलता है अच्छा मतलब अच्छे चीज़ें मिलती हैं है ना दोस्तों जीवन में हमें सब कुछ वो जो हमें चाहिए वो मिलता है ईश्वर यीशु मसीह हमें वो सारी खुशियाँ वो सारे अच्छे पल हमें देते हैं वो हमारी चिंता करते हैं वो हमारा ध्यान रखते हैं तो इसी की तरह मतलब यीशु मसीह की तरह हमें भी उनके वचनों का पालन करना बहुत ज़रूरी है और हमारा कर्तव्य भी है दोस्तों यस तो सुनते हैं फिलहाल द विश्वासी के तरफ से गाया प्यार का सागर मेरी तरफ से आप सभी के नाम

जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह प्यार का सागर हैं और अगर आप भी उनके प्यार में डूबना चाहते हैं तो आप ज़रूर डूब सकते हैं। लेकिन कैसे? जैसे कि उनके वचनों का पालन करते हुए और उनके रास्ते पर चलते हुए दोस्तों। और हमें कभी उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे हमें इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं यीशु मसीह, कि वे नहीं चाहते कि हम कुछ गलत काम करें, है ना दोस्तों? यस। और हमें हमेशा अपने काम करने से पहले उन्हें याद करना चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, काम करने के बाद भी, काम करने से पहले भी दोस्तों। यस, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें एक नया जीवन दिया है दोस्तों। इस नए जीवन को हमें ऐसे वैसे गुजारना नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है? यस। और दोस्तों हमारी तरफ से भी ये फर्ज बनता है कि हमें उनका पालन करें, ठीक है? हम उनका पालन करें दोस्तों, ठीक है? यस। जिंदगी में कभी भी दोस्तों यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि हम गलत काम करें, ठीक है? यस, आप मेरे दोस्त जो इस FM 100.7 को सुन रहे हैं, हम नहीं चाहते कि दोस्तों आप जिंदगी में भी कहीं पर भी रहें, कहीं पर भी जाएं, आप जो भी काम करेंगे ना वो आप दिल से कीजिएगा, लेकिन दोस्तों वो काम एक अच्छा काम होना चाहिए, गलत काम कभी भी मत करिए दोस्तों, ठीक है? यीशु मसीह हमें इतना प्यार करते हैं, अगर उनके प्यार को छोड़ के, उनके प्यार के सागर से दूर जाकर, उठ कर, बाहर निकलकर, हम बाहर की दुनिया में दोस्तों अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें जीवन में कुछ सफलता भी नहीं मिलेगी और हमें हमेशा उदासी ही मिलेगी दोस्तों, ठीक है? इसलिए हमेशा सही रास्ते पर चलना और चलने के लिए कोशिश कीजिएगा, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, किसी के साथ भी हो, आप बुरा बर्ताव मत कीजिए, है ना दोस्तों? यस, आप अगर बुरा बर्ताव करेंगे ना तो रिटर्न आएगा, ठीक है? यस। तो यहाँ पर हितेंद्र दास जी की तरफ से संदेश आया है, उन्होंने लिखा है, गुड मॉर्निंग आरजे जी, फ्रॉम हितेंद्र दास, असम। यस, आपको भी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात।

आदि देंद्र दास जी, हमें सुनने के लिए इस FM 100.7 का साथ देने के लिए, हमें संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाकते पाबिल को ठेरियान अर्चे वी अली लपे ले तुर खा मिंग मोयते या जिलल सामा पर पारिपो अमेका सांगते या ngori sailo bi kungte ya le itan kalane aronti ane hakte pabil ko khir bahut bahut shukriya aapke sandesh ke liye aur hum bhi jo agla geet pesh karne wale hain ye aapke liye hum समर्पित करना चाहेंगे और हम दुआ करते हैं हाकते पाबिल को क्लियर कि आपका दिन अच्छे से बीते खुशियां और ढेर सारे आनंद के साथ। और एलारा मामी थियान आरजे वी एल चिबे ड्यूटी नामले अरोंतिया नंग पो पुएलार चिबे मुल्ले ओ तिचुआन दम छुंग शनिम गई नही नुन tlei na kong om chhun ni ma se dam rei leh rei lo aya chuan dam chhung nun hman dan tur hi angai poimo om sok a dik hle mai izaitir tur a vai khan itan leh ngai la tu te tan o ron tini pu elara hian a ron tho o a ron sui dik thei khop mai a ron tho cha thei khop mai a dik khop mai o kan zawain o kan lo shetlang thar leh anga te ro thil tha lo laka hi chuan enge mani hi inti tluk hi tum lo ila te ro midang poite soi lo ila midang te bum lo ila mo o pathian du zongin om sham sham ila chu chu ring tu nun om dan tur po ani si a te ro te chuan pa eng a hian VL kalau lut man mi o lo tlat mai apoi lo reng reng o lo ngai tha thau tura kan ngayang o ole तो चलिए अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को। विजय गीत मंडले जिम्बाब्वे की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा गीत आओ मिलकर। यस, आओ मिलकर हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चले, उनका गान करें, उन्हें पूजे। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं ये अगला गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हम शुक्रगुजार हैं कि आप सभी ने हमारा साथ दिया इस हमारे मसीही गीतों के सबसे पहले खंड में दोस्तों। और आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल एफएम से 100.7 और हिंदी के खंड पे आपके साथ जुड़ी है आप सभी की दोस्त आरजे वीएली। और हमारा समय खत्म होने वाला है दोस्तों। यस, एक गीत के साथ आप सभी से विदा लेने का समय आ चुका है। और दोस्तों, अगले खंड पर आपके प्यारे प्यारे दोस्त आरजे लोमी और आरजे पुइतिया हाजिर होंगे दोस्तों। आप सभी को वेस्टर्न म्यूजिक और मिजो डिवोशनल सॉन्ग सुनाने के लिए दोस्तों। और मैं वापस आऊंगी दोबारा अपने हिंदी के खंड को लेकर 10 बजे। यस, 10 बजे मैं वापस आऊंगी। तो आप सभी का दोबारा इंतजार रहेगा। और मैसेज मिरोना कनवान इन तोंखात वे तिरो आप ठीक हो ना इंगे उम्र ए नेक्स्ट ड्यूटी पुते ने आपके लिए समर्पित करती हूँ हुन मन नुआम वेक ओ अरुंदी अनि लूते ही लूते ही फेल छिन ले मैं नंगपो नुआम दविन हुनी लो मंग दुनिया ओ। तो चलिए दोस्तों, इजाजत दीजिए। और जिन्होंने भी सुबह का नाश्ता नहीं किया है उन सभी के लिए आरजे वीली की तरफ से और अपने अपने कामों में आप सभी जा रहे होंगे, अच्छे से जाइएगा, सावधान से, सावधानी से, ठीक है, अपना ख्याल रखना। तो ये आखिरी गीत आप सभी के लिए मेरी तरफ से।

नमस्ते श्रोताओ, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने, जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।

हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात. आप सभी प्यारे दोस्तों को, आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM जोई 100.7. दोस्तों, और आप सभी कैसे हैं? दोस्तों, आप सभी अपने अपने कामों में जाने के लिए रेडी होकर पहुंच चुके होंगे, है ना दोस्तों? यस, सुबह के यस 10 बज चुके हैं दोस्तों. हम शुरुआत करते हैं. आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हिंदी के खंड पे. और फिर एक बार आप सभी के लिए हिंदी के खंड पे जुड़ी है आप सभी की दोस्त आरजे वीएली. और उम्मीद है दोस्तों, आप सभी को मेरे साथ हिंदी के गीतों को सुनकर आप सभी को अच्छा लगेगा. आप सभी हिंदी के गीतों को आप पसंद करेंगे दोस्तों. तो चलिए इस खंड की शुरुआत करते हैं बहुत ही मस्त गीत के साथ. सोना कितना सोना है, यस, ये गीत में इस खंड का सबसे पहला गीत, यस, इस खंड के सबसे पहले गीत से मैं ये शुरुआत करना चाहूंगी इस खंड को, इस गीत के साथ, यस. और हम चाहते हैं कि आपका दिन यूं ही अच्छे से बीतता रहे. और दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि आपको जिंदगी में खुश रहना है ना, तो आपका दिल साफ होना चाहिए, ठीक है? यस. शिंगनु ना हियान लिमि दु चुआनी थिन लुंग खा अथियांग लिम फो तंगाई के सुन चुल के ती जो चु ओ थिन लुंग थियांग लिम ती खा कंगाई पे मो तो तानी मो. तो चलिए मेरे साथ प्यार भरे बातें बातें करने के लिए FM जो ओ 100.7 को सुनिए दोस्तों. यस, तो चलिए, जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो दिल साफ होना चाहिए. अगर जिसका दिल साफ है ना, अगर जिसका दिल साफ, यस, जिसका दिल साफ होता है वो हमेशा खुश रहते हैं. और दोस्तों, यस, वो सारे चीज झेल सकते हैं, ठीक है? उनके सामने कोई बुरा व्यक्ति आए या ना आए, है ना दोस्तों? तो चलिए सुनते हैं सोना कितना सोना है मेरी तरफ से आप सभी के नाम.

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को इस खंड का सबसे पहला गीत बहुत ही मस्त, जो हमारे उदासी को दूर भगाने वाला दूर करने वाला गीत सोना कितना सोना है, बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी को जरूर सुनकर अच्छा लगा होगा। यस, आप सभी को पसंद आया होगा। और चलिए, जैसे कि हमने कहा था कि अगर आप को जिंदगी में खुश रहना है तो आपका दिल सच्चा होना चाहिए। यस, अगर आप किसी से भी प्यार करेंगे ना दोस्तों, आप सच्चा वाला प्यार कीजिए। सच्चा वाला प्यार हमेशा जिंदगी भर कायम रहता है। और मैं नहीं चाहती कि आप किसी से भी झूठा वाला प्यार करें, ठीक है। यस, और कभी भी जिंदगी में दूसरों को दुख मत देना, नहीं तो दोस्तों आप जिंदगी में ना आपको चैन नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और भगवान आपका साथ भी नहीं देंगे, ठीक है। यस, इसलिए सच्चा वाला प्यार कीजिए सबसे, ठीक है, और अपने आप से भी करिए। और बुरी बात मत कहिए किसी से भी, किसी के दिल दुखाने वाली बातें भी मत कीजिए, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, उसे जाने दो दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर आपके तरफ से संदेश जो आए हैं वो मैं पढ़ना चाहूंगी। केवल ह्यान अजबिया जामने इन इनकारा छियान गिन कलव इन से वे ते दोनिया और रोंतिया कछिया दिकेम ते तीखा चेत ती ती ती तुरंगे मेरे दोस्त जामहियान अर्जेवीएल, यस नेक्स्ट सॉन्ग इतान सौ अरोंदिया ओले जाम कलोम तो को जाम कंगाई तुप से इफेल सी मेल छेसी फ्रेश बॉक्स इथिन लुंग तिखा थियांग लिम मेल गति थिन लुंग थियांग लिम ते अपोई मोसिया अपोई मोनिया ओ थिन कन थिन लुंग ते थियांग लिम लो चुआन अच्छा लो निया और उंगुर हियान अजविल निचिन और ओ इचन चिन ते खा कलो छवे अनिया हे खोवेल हि जोंग चेनरम अनिम्याव मैसी कतोर पुइलु तुकचे ओ ललपन लो ओम पुइ तल जेल चो जेल चे तुरिन दुसकना कलान चे ओ केपो नुले पाने तो लविन प्यान पुइ तेन मिन बोरल सन नुआल बोका हिम तका हुन मनजेल हि तुमंग ओ चुति लो छुआन अन लो किर तो दोन सी लवा गन कन चोलेन ती लाई तकी उंगोर दिल्ती नुआम जेल ओ रोन दिया ओले अनि ए तरो उंगोर इसोई दिखलु तुक न्याग नकी नाच्वान के नी ते पो कन लकल वेक दोन थाउ थावा तरो मसे के मा नुखा कंगाई बोन तो पा सोए तम लव में यंग अचन का चपले में यंग कचिया ते लव का कचा दान ते अंजिरमो तो तुत्यांग खोब चन कनू ने हे कनू लगा खान हे कपी चो तोप तानी चो ओ के मा बो ही हे कनौ रई हनी चो मो मसीनी ए नकिना चुन ओ रिलुपुई तिंखा पुजेल पुछौ जेल खा अंगाई बोक सिया ते रऊ मलम ते कन पन जेल अंगाया रिंग टू कन निम्याव सिया ते रऊ ओ रिंग टू नुन खा के मानिया खान तपुई मुखा अंगाई सिया पथियानी मिन मंगाई वेका ते रऊ नंगनी पो मंगाई चवा के पो मिन मंगाया नकिना चुन कन लकल वेक दोना कल मसा साखा अनवान नहीं निमे या तरो चुवाइन कन दम छोंग हियान कन थिलती ही ओ कन थिलती ना हियान फीम खोर जुआली ला तू पोई मासोई लव इला मंगई कन ने पोईन थिन लुंग तकिन मंगई ला एंगे हे कन दू जोंग ले दू लव जोंग ते ओम बे हिमो चुत्यांग पोकिन
के मानी ह्यान रिन ओम नते थियांग हिम नते रिलुचा तेही लौने जेलीला तेरो ओंगोर तेरो जाम गसे दिकेम ओले तो फिलहाल मैं मतलब बक बक ज्यादा कर रही हूँ. मेरे दोस्त विपिन और दुर्गेश जी और उके वाला की तरफ से संदेश आया है, लेकिन मैं इनका संदेश इस अगले गीत के सुनाने के बाद मैं पढ़ना चाहूंगी. कहीं मत जाना, ठीक है आप लोग कहीं मत जाना, मैं जल्दी वापस आऊंगी इस गीत के सुनाने के बाद और मैं पढ़ूंगी आपके संदेशों को कि आपने क्या लिखा है हमारे लिए और यस प्यारे श्रोताओं के लिए आपने क्या लिखा है. तो चलिए सुनते हैं जब किसी की तरफ दिल, बहुत ही खूबसूरत गीत कुमार सानू की आवाज में गाए गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम.

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को कुमार सानू जी के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे आप सभी को जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। प्यार भरे बातें करना तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जब जिंदगी में किसी को ना प्यार ने अगर धोखा दिया तो प्यार के बारे में बार बार कहना भी कभी कभी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है ना दोस्तों। और वैसे भी और हर किसी का रिलेशनशिप भी एक जैसा नहीं होता है, इसलिए हम प्यार भरे बातें करेंगे और साथ साथ पॉजिटिव बातें भी करेंगे, नेगेटिव बातें हम बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों। तो आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइज़ोल FM 100.7 और हिंदी के खंड पे आपके साथ बहुत ही प्यार भरा पॉजिटिव बातें करने के लिए कर रही है आपकी दोस्त आरजे वियली, हाजिर है आप सभी के लिए। और दोस्तों, कभी भी अपने आप को अकेलापन महसूस मत कीजिए, ठीक है? और हमेशा खुश रहिएगा। मैं चाहती हूँ आप हमेशा खुश रहें और आप हमेशा अच्छी बातें ही सोचे करें, ठीक है? तो आप अच्छे इंसान बनने के लिए हमेशा कोशिश करिएगा, ठीक है? हम ऊपर वाले ने हम सभी को अच्छा इंसान बनने के लिए एक नया जीवन भी दिया है, ये बात भी मत भूलिएगा, ठीक है? और चलिए, विपिन की तरफ से हमें संदेश मिला है। और मेरे दोस्त मैं बहुत खुश हूँ। मैं हर पल ये कहती हूँ, अक्सर कहती हूँ कि मुझे FM ZOI के जरिए बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले हैं जैसे कि विपिन भी, जैसे मतलब अभी इतना हम क्लोज हो चुके हैं, जो एक हमारे बीच एक दोस्ती का, भाई बहन का ऐसा रिश्ता मैं फील करती हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी मुलाकात FM ZOI के जरिए मेरे दोस्त विपिन से मुलाकात हुई।

इसलिए ना दोस्तों मैं कहती हूँ कि जिंदगी में ना कभी उदास नहीं होना है, क्योंकि क्योंकि ना जिंदगी मतलब हमें बहुत अच्छे अच्छे रंग दिखाते रहेंगे अगर हम सच्चे होंगे तो. ठीक है, यस. और विपिन लिखते हैं कि आज विपिन नमस्ते, आपको भी नमस्ते विपिन, और सोचा किसी अपने से बात करें अपने किसी खास को याद करें. फैसला किया जब तो एफएम जो ओई पर आपकी आवाज सुनने को मिला इंच बहुत मजा आता है विपिन, जब इस तरह आप हमें संदेश भेजते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और हमें पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है, सुनने में भी, और हमारे दोस्तों को भी अच्छा लग रहा होगा शायद हमारे इस तरह के कॉन्वर्जेशन को सुनकर. और दुर्गेश जी लिखते हैं कि दिल तो सच्चा होना चाहिए, मैं तो अपनी वाइफ वंदना जी से सच्चा वाला प्यार करता हूँ. और यस, दुर्गेश जी ने ऐसा लिखा है. वाह, मैं बहुत खुश हूँ दुर्गेश जी कि आपने इस तरह हमें बताया कि आप सच्चा वाला प्यार अपने वाइफ से जो करते हैं. यस, ऐसा होना चाहिए. शादी के बाद तो मतलब झूठा वाला प्यार कभी भी नहीं देना चाहिए अपने अपने पति को, अपने वाइफ को, या किसी को भी. दोस्तों शादी हो गया है तो मरते दम तक निभाना है दोस्तों. ठीक है, यस. कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन क्या करें, समय नहीं रहता है, आपको गीत भी सुनानी है तो यस, हम बहुत खुश है कि दुर्गेश जी अपने अपने वाइफ से बहुत ही सच्चा वाला प्यार उन्हें करते हैं. और आप करते रहना दुर्गेश जी, ठीक है, कभी भी उन्हें दुख मत देना. ठीक है, जिंदगी बहुत छोटी है. ठीक है, ये बात हमें हमेशा समझना चाहिए, जानना चाहिए. जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए इस छोटे से पल में ना आप प्यार भरा जिंदगी अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ भी हो, वाइफ हस्बैंड दोस्त गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब, उनके साथ अच्छा अच्छे से सच्चा वाला प्यार कीजिए तो जिंदगी बहुत मतलब खूबसूरत दिखने लगेगा आपको, हर तरफ अच्छा ही अच्छा दिखने लगेगा, आपको अच्छा भी लगेगा. और हम नहीं चाहते कि आपका ये जो टाइम वक्त है ना बुरे समय से बीते. ठीक है, तो चलिए सुनते हैं अगला गीत. मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी बहुत ही खूबसूरत गीत. यस, सुनते हैं. मैं अगर कहूँ सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में गाएगी आप सभी के लिए मेरी तरफ से.

मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी को श्रेया घोषाल और सोनू निगम जी के आवाज में गाया गीत मैं अगर कहूँ आप सभी को कैसा लगा बताइए अपने संदेश के जरिए, और आप सभी को कैसा लग रहा है हमारे साथ एफएम ज़ोय पर हिंदी के गीतों को सुनकर दोस्तों। यस, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको गीत अच्छा लगे। तो यहाँ पर अगला गीत सुनाने से पहले मैं चलना चाहूँगी आपके भेजे गए संदेश की तरफ, और संदेश आया है मेरे दोस्त वी कुंगतेया की तरफ से। कुंगतेया ह्यान, ध्यान रुंती अमुम कन कचरा छोला में दो मने ले ओ मसे मिन हाउ ले दोन सिया लाउ बॉक सिया कुंग ते हिया ना जेमों वी एल इचों कम चुआन मिन वेल जेप में दोन लोम ले मिन दिन नाउ बैक इन के शिया रन दिया नी चे ती मी आ चु बांग चुआन थिल लुंग आई थाक दू दे वांग जी खचु कन सोई लफांग ते रो कुंग ते सोई चुआन कन इंगे कन कूल ले मई दोन इन लंग सी आ तेरो चफांग इन आई ता तू ते खान नॉम लो अन लो ते पलंग ते पोका लो अन बुक सी आ। इसलिए हम मतलब वैसे

वाली बात, वैसे वाला बात हम नहीं करेंगे। यस और हमें पता, मतलब हमें पता है कि जो संदेश नहीं भेजते हैं लेकिन वो इस FM 100.7 को सुनते हैं, हमें सुनते हैं, तो अच्छा लगता है ऐसा सुनकर। और यस जो भी, यस जो भी हमें चुपचाप सुनते हैं, उन सभी प्यारे दोस्तों के लिए मैं ये जो अगला गीत है पेश करना चाहूँगी। और तो चलिए, यहाँ पर हितेंद्र दास जी की तरफ से संदेश आया है। हेलो आरजे जी, ज्यादा गर्म है। तो इसका मतलब है कि हितेंद्र दास जी को थोड़ा सा, मतलब ज्यादा सा उन्हें गर्मी लग रही है। तो चलिए हम कोशिश करते हैं इस गीत के सुनने से उनके गर्मी फीलिंग वाली को, मतलब फीलिंग वाला, गर्म फीलिंग वाले वाला, मतलब उन्हें ठंडा कर दे ये गीत। तो चलिए सुनते हैं, बहती हवा था वो जो, मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

Well, दोस्तों उम्मीद है आप सभी को मेरे साथ हिंदी के गीतों को सुनकर अच्छा लगा होगा। अब दोस्तों आप सभी को आखिरी गीत सुनाते हुए मेरी तरफ से अलविदा कहने का समय आ चुका है केवल इस खंड के लिए, पर मैं वापस आऊंगी दोबारा अपने खंड को लेकर 12 बजे दोस्तों मैं वापस आऊंगी। तब तो आप सभी फ्री हो चुके होंगे है ना अपने अपने कामों से। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी खुशी से अच्छे से अपना वक्त बिताते रहिए दोस्तों। मतलब आप सभी जानते होंगे जो जो मैंने आपसे कहा है कि जिंदगी में खुश रहने के लिए एक सच्चा वाला दिल चाहिए। अगर दिल झूठा होगा ना तो आपको कोई दोस्त भी नहीं मिलेगा, ठीक है। एम आई राइट विपिन? यस। तो जिंदगी में खुश रहने के लिए दिल सच्चा होना चाहिए और हमारा प्यार सच्चा होना चाहिए, ठीक है। यस, झूठी बातें, झूठे वादे, मतलब कुछ भी छोटा वाला चीज अपने अपने साथ मत रखिए, दिल को साफ रखिए, ठीक है। तो चलिए ओए मुंडिया से मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी।

हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी को आरजे वीली की तरफ से गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर। और आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM और 100.7 दोस्तों। और हम आप सभी का दोबारा स्वागत करते हैं हिंदी के खंड पे। और हिंदी के खंड में मैं हिंदी के गीतों के साथ हाजिर हूँ, आप सभी की दोस्त आरजे वीएली दोस्तों। और आप सभी का दिन समय कैसे चल रहा है दोस्तों, जरा हमें भी तो बताइए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से अपने अपने समय को बिता रहे होंगे, आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। यस, जिस जिसके साथ भी हो, आप जो समय बिता रहे हैं वो अच्छे से चल रहा होगा। यस, और अपने अपने काम अच्छे से भी कर रहे होंगे। तो दिन के 12 बज चुके हैं, तो आप सभी कुछ कुछ खाने के लिए चाय वगैरह, ठंडा कोल्ड ड्रिंक, ये सब आप पीने वाले होंगे, है ना? यस, तो मतलब इतना भी काम मत कीजिए कि आपके सेहत में कुछ अगर गड़बड़ी आ जाए। यस, आपको अपना ध्यान भी रखना है, आपके सेहत का ध्यान भी रखना है, साथ साथ आपको काम भी करते रहना है ना दोस्तों? तो चलिए हम अपने इस खंड की शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, जुबिन नौटियाल के जुबिन नौटियाल और आशीष कौर की आवाज में गाया गीत सुनते हैं, राधा लंबिया, मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

दोस्तों, मेरे आप सभी को राधा लंबिया, जुबिन नौटियाल और आशीष कौर की आवाज में गाया बहुत ही सुंदर सा गीत आप सभी को पसंद आए होंगे। दोस्तों, जब हम साथ रहते हैं अपने बहुत ही मनपसंदी दोस्तों के साथ, तब हमें मतलब हम चाहते हैं कि रात बहुत लंबी हो उनके साथ हमेशा वक्त गुजारे, है ना दोस्तों? यस, तो अच्छा लगता है ये सब बातें करने में ना दोस्तों? यस, आपको भी सुनने में अच्छा लग रहा होगा। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी का दिन, समय, आने वाला कल, आने वाली शाम, आने वाली रातें हमेशा, यस, बहुत ही अच्छे से बीतता रहे दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपको सच्चा इंसान बनना बहुत मतलब बनना होगा और बहुत जरूरी भी है। ठीक है, आप सच्चा इंसान बनने के लिए कोशिश कीजिए। अच्छे अच्छे इंसान आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, और मैं चलती हूँ आपके भेजे गए संदेश की तरफ। विकुंते हियान वो इन Marian zo thân pui news reader tan ni pui mo tak ani puali na ron ti ani kung te hian e kai ani tak mo nuam te win hun lo mang se tro chuan pathian mal som na tam tak te kha lo dong bok sela tro kung te idu sak na aro pui chi ne te chuan hiten da das chi ne good noon RGG, yes, aapko bhi Hitendra Das ji. Or zam hian RJVL good afternoon or zam nang pole o RJVL imo isakmen hi ka thopui puzai manen kan lo ngai kan lo nga khel top o tudi mo zam ipai li sa moi thei kan ti ania o next song itale control room a duty tele duty officer tale zoram remote fm zo remote run bel tu te tan po aron tiani ole jam kalom lu tuke o hunwam deu in lo manzil theina na te kha tu te in lo thok zel ru o o en ma hi lung kham hi ne lo tur te ro jam Chuan, meng moi te hian, banlal good afternoon aron ti boka, ole meng moi te bahut bahut shukriya, aap sabhi ko meri taraf se, RJVL ki taraf se, good afternoon, shubh dopahar, dil se, Chuan, Amosa, Shillong te hi anvanri, em zam, Chuan, fitness boy te po hi anre, kati, Chuan midang dang po anre, UGP po re, inga tinge, an ngay omlom, may, Chuan, nilaw biyagit doon niya, o zam, andam chatura, bay se ila, tro, ते चुआन तो चलिए अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी के गाए आवाज में। यस, गीत बहुत ही खूबसूरत गीत तू जो मिला। यस, ये गीत में आप सभी दोस्तों को सुनाना चाहूंगी और दिल में ये याद रखते हुए ये गीत मैं सुनाना चाहूंगी जो भी, यस, हॉस्पिटल में जो बीमार मरीज ये सब है ना, उन सभी के लिए मैं डेडिकेट करना चाहूंगी। स्पेशली कैंसर इंस्टीट्यूशन सेंटर के सभी पेशेंट के लिए मैं ये गीत पेश करना चाहूंगी दोस्तों। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये कभी मत भूलिएगा कि अगर आप जब स्वस्थ है ना, हेल्दी है ना, अपने काम के लिए जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, तो उस समय ना आप कभी भी मत भूलना कि आप कितने खुशनसीब हैं कि ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा दिन दिया। इसलिए अपने समय दिन को बहुत ही अच्छे से बिताना चाहिए। यस, बहुत ही सावधानी से भी और सच्चे दिल के साथ बिताना चाहिए। तो आइए आपके समय दिन को और भी अच्छा बनाते हैं तो जो मिला गीत से। तो चलिए ये गीत आप सभी के नाम।

Well, दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को सुकून गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। दोस्तों, ये गीत कौन नहीं चाहता इस गीत को, है ना? और वैसे भी ये गीत तो आजकल बहुत ही ट्रेंडी चल रहा है, स्पेशली यहाँ मिजोरम में। यस, तो चलिए हम अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी दोस्तों को, आवन जवान गीत। और यस, गीत सुनाने से पहले दोस्तों, आपके भेजे गए संदेश की तरफ मैं चलना चाहूंगी। जामहियान कठियान पर जामहियान फेलुतुक महियान, यस कहलदू बेर सुकून ला मिन लौ लेता का हैप्पी टॉप सरंती ने खा खानी मैसी।

संदेश मिला है और उन्होंने लिखा है, ध्यान से सुनिएगा ठीक है, और उन्होंने लिखा है कि हिंदी लाही छु नि सदर वोलाइन अंग नोबिक चुतीमो मासे रासुर नुआयापो मासे रासुर नुआयापो अंग नोम मिस डी जे रंदीतला मिस आर जे तुर्खा ओ मासे पैलवे इ ओ अमोय सी इमेल मुआचा गोम रंदी छु हिंदी ला हिचु नि एट्रो नौ अब तमो और बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस तरह हमें संदेश भेजने के लिए। और यस, अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो आप मिल सकते हैं, आप कभी भी आ सकते हैं FM Zoy स्टूडियो पर हमसे मिलने के लिए। यस, बहुत बहुत शुक्रिया तिरमोया तिलरमोया ओ आपको हमें संदेश देने के लिए, भेजने के लिए और हमें सुनने के लिए। ओ चुआन एलजित साइलो हियान अमोय कति छन पो कछलो अथुगले नंगमा ही आ इन अंग सुकून ही अथु कशेदेर सी लवती नानी चु सुकून ते चु कन सोयुन तो खा एलजित साइलो इले शेलो मी हम बार बार कहते हैं कि सुकून का मतलब पीस थमुआना मो और के गईते की तरफ से के गईते हियान कलो गाई थे निया कनाव कबुआई देवा कलूत मन लोक लो ओ सॉरी लुटुको रंदी एनी वन फेल छिन तक एम अनुम छो चंदो ने तिंग मोया पहली पहली बार हमें संदेश मिला है और हमें ये पता चला है कि यस हमारे ये FM Zoy 100.7 के लिसनर्स घट नहीं रहे हैं, बढ़ रहे हैं। डिक्रीज लविन इंक्रीज अनी थर ले आते चंगीन अलोमो मनी। तो इसी खुशी के लिए चलिए मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को आवन जवान गीत अरिजीत सिंह की आवाज में गाया गीत। तो चलिए सुनते हैं मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को अवन जवान गीत मेरे साथ आप सभी को पसंद आया होगा। और यस, हमारे दोस्त मतलब आप सभी दोस्तों को ज़रूर पसंद आया होगा, और जो चुपचाप हमें सुन रहे हैं वो भी वो गीत जो हम पेश कर रहे हैं उन्हें भी पसंद आ रहा होगा। सुन, मेरे दोस्त अजामा लिखते हैं कि RJVL इमो DSS Ramloti Awan Re Takni Air Mamuni Pohi Re Top Win Hi Hitender Das Asam Hyan FM Sa Oilan Tamapal Lawan Yang A In Me E Mai Anime Taini Andi Melila Nilavanga Boy Niang Zam Ole To Chelye Agla Git Surana Chahongi Apsabi Dostuko जीने लगा हूँ। बहुत ही खूबसूरत गीत आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में गाएंगे मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को आतिफ असलम और श्रेया घोषाल के आवाज में गाया बहुत ही खूबसूरत सा गीत जीने लगा हूँ। जब एक अच्छे इंसान से मिलने के बाद ये एहसास होता है कि हम जीने लगे हैं, है ना दोस्तों? यस, तो अब हम चलेंगे

अगले गीत की तरफ। और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी, बहुत ही खूबसूरत गीत। यस, आप तो फरमाइश करते नहीं। और चलिए, मेरे मनपसंदी गीत आप सभी पसंद कर रहे होंगे। और चलिए, अब यस, अगला गीत मैं आपको सुनाना चाहूंगी, हद कर दी आपने। यस, सुनते हैं मेरी तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए। और यहाँ पर ती लर्मो यहियान, ओ कोई बात नहीं, मिस सॉरी आरजे। यस, कोई बात नहीं। यस, ये जो अगला गीत है ना, ये गीत आपके लिए स्पेशली, ठीक है? तो चलिए सुनते हैं, हद कर दी आपने मेरी तरफ से, कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की आवाज में गाएंगे आप सभी के नाम। और के गए तेले मेरे दोस्त जामते में से चुरंत लेने ले आकन के खरी लोक संग ओम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को हद कर दी आपने कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण जी की आवाज में गाएंगे, तो आप सभी को पसंद आए होंगे। तो चलिए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमारा समय 12:40 तक का ही है दोस्तों, यानी 12:40 तक का ही समय है हमारे पास। तो जामहियान मेरे दोस्त लिखते हैं कि आज वी एल हितेंद्र दास असमले दासी रमलो तीते इनकारा एंगेमो थोम रिरे रेगा ओम खा इलाऊ लशवे लवानी मोरन दिया शिवेरे रेगना जाम केंगे ते यान हिंदी ला कदू बे बेर्चु मो प्यार के पल खा कदू के चु कनाव अरेम चुन लो प्लेला येस ऑफ कोर्स कंप्लेन यांग ओ कंप्लेन गेंगे यांग। तो फिलहाल चलिए सुनते हैं भी किसी भागी सी मेरी तरफ से इस खंड का अगला गीत आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, हम चाहते तो हैं आपको बहुत ज्यादा गीत सुनाने का, लेकिन सुनाने को लेकिन हमारे पास समय नहीं है। हम ऐसा भी नहीं कर सकते, आप सभी जानते होंगे। यस, इस अगले खंड के बाद आप सभी से जुड़ने के लिए दोबारा आपकी आरजे लोमी हाजिर होगी आपको ज़ायरिमो मिज़ो लव सॉन्ग्स सुनाने के लिए दोस्तों। और मैं वापस आऊंगी 1:50 पर, यानी 1:50। मैं दोबारा आऊंगी आपको हिंदी गीत सुनाने के लिए, ठीक है। और जाते जाते दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूंगी, बहुत ही खूबसूरत बातें, यस, कि दोस्तों कहते हैं कि अकेला रहना सीख लो दोस्तों, अकेला रहना सीख लो, क्योंकि जिंदगी हर मोड़ पर आपका साथ नहीं देती, ठीक है। यस, अकेला रहना सीख लो क्योंकि क्योंकि जिंदगी हर मोड़ पर आपका साथ नहीं देती। लोग मिलते हैं थोड़ी देर के लिए, अपने लगते हैं, फिर वक्त के साथ बदल जाते हैं, ठीक है, याद रखना इसको। लोग मिलते हैं थोड़ी देर के लिए, अपने लगते हैं, लेकिन फिर वक्त के साथ बदल जाते हैं। आप दिल से रिश्ता उन रिश्तों को निभाते हैं, पर जब आपको सहारे की जरूरत होती है ना दोस्तों, अक्सर खुद ही खुद का सहारा बनना पड़ता है। अकेलापन दर्द देता है, पर धीरे धीरे वक्त तुम्हें समझा देता है कि तुम आप खुद के लिए काफी हो, ठीक है। रातों में खुद से बातें करना और खुद को संभालना, ये सब आदत बन जाती है। और सच ये है, जब तुम अकेला जीना सीख जाते हो तो फिर किसी के होने या ना होने से तुम्हारी जिंदगी रुकती नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। जब तुम अकेला जीना सीख जाते हो ना दोस्तों, तो फिर किसी के होने या ना होने से तुम्हारी जिंदगी नहीं रुकेगी, बिल्कुल नहीं रुकेगी, ठीक है। तो आइए केंगे दे का फरमाइश गीत पल से मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। मिलते हैं 1:50 पर, तब तक के लिए दोस्तों आज वेले को इजाजत दीजिए, और ये पल मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

नमस्ते श्रोताओ, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने, जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।

हेलो नमस्ते आप सभी को आरजे वीली की तरफ से गुड आफ्टरनून शुभ दोपहर आप सभी प्यारे दोस्तों को आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल एफएम 100.7। और दोस्तों आप सभी का दिन कैसे बीत रहा है और आप सभी कैसे हैं? आप सभी ठीक है ना दोस्तों? यस, तो चलिए आप सभी का हम स्वागत करते हैं दोबारा आज के हमारे हिंदी के आखिरी खंड पे दोस्तों। और मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे गाने, अच्छे अच्छे गीत। यस, और इसके बाद तो मैं आप सभी से यस इस खंड के लिए आज के लिए दोस्तों यस अलविदा कह दूंगी और चली जाऊंगी आप सभी को छोड़ के। तो चलिए फिलहाल हमारे पास थोड़ा सा समय बचा है इस थोड़े से खंड में, पल में हम बहुत ही अच्छे से अपने समय को बिताते हैं और सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, मेरी तरफ से इस खंड का सबसे पहला गीत आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, अभी जो हमने गीत सुना है जानी सार अरिजीत सिंह की आवाज में गाया गीत, आप सभी के लिए, आप सभी को जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। यस, और यहाँ पर बहुत ही प्यार भरा संदेश मेरे दोस्त जामा की तरफ से भेजा गया है। उन्होंने लिखा है कि पथियान सार आप वही नान इसक में तो अपना बेरा लो इन हेर स्वाग लेता अलोम ओम ले मई रोल खुलना होम लो वाह इदी उदी लुआ तक इन इलेन थे दोन ओ इलेन थे दोन वांग इन ओ लुआ तक इन ओ इलेन थे दोन ओ लुआ तक इन हो अंग से ओ नेक्स्ट सॉन्ग इतान चो अरुण ती आ मेरे दोस्त जामनी, बहुत बहुत शुक्रिया जाम आपके इस प्यार भरे संदेश के लिए। और हितेंद्र दास जी ने गुड नून आरजे जी, यस आपको भी गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर हितेंद्र दास जी, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ए ओ नहीं, ये तो मेरे लिए नहीं है, हितेंद्र दास जी का ये जो संदेश है 124 का मैसेज है, यस। पर कोई बात नहीं, हितेंद्र दास जी भी हमें सुन रहे हैं शायद। और ये हिंदी का आखिरी खंड है, 2:05 तक खत्म हो जाएगा आज के लिए दोस्तों। और लेकिन हम आपसे ये नहीं कह सकते कि कब दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तो चलिए, फिलहाल हमारे पास 10 बचे हैं। अगला गीत सुनाना चाहूंगी नीति मोहन की आवाज में गाया गीत तू ही तू, मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को इस खंड में मेरे सुनाए गए हिंदी के फिल्मों के गीत आप सभी को ज़रूर पसंद आए होंगे दोस्तों। यस, मन तो करता है कि यूं ही आपको गीत सुनाते रहे और आपसे बातें करते रहे दोस्तों, लेकिन हमारे जाने का समय आ चुका है। आज के लिए ये हिंदी का आखिरी खंड है दोस्तों। आप सभी को मैं दोबारा दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी कि आप सभी ने हमारा साथ दिया। यस, हर खंडों में, हर सेगमेंट पर आप सभी ने हमें प्यार भरे संदेश से खुश किया, हमें हमसे बातें की। इसके लिए हम आपको आपसे दिल से शुक्रिया अदा कहते हैं दोस्तों। इसी तरह आप हमेशा जब भी आपको मौका मिलेगा, वक्त मिलेगा FM से और 100.7 से जुड़ने के लिए, सुनने के लिए दोस्तों, हमसे बातें करने के लिए, आप जरूर आइएगा, आपका इंतजार रहता है। तो कहना तो नहीं चाहते दोस्तों, अलविदा कहने का समय आ चुका है। और जाते जाते मैं एक बात आप सभी से रखना चाहूंगी दोबारा, छोटी सी लाइन है दोस्तों। यस, कि जिंदगी में आपको खुश रहना है ना, तो आप मतलब आपका दिल सच्चा होना चाहिए, ठीक है। शिंगनुन अहियान लिम कंदु चुआन कन रिल रूही अथियांग लिम मसक अंगाई ए मेमनी ओ रिल रुथियांग लिम लौतान चुआन खोवेल खोवेल ही एटिंगे इंशा थाम पे खातरो अपोय मो लुतुक थिन लुंग थियांग लिम रि रु थियांग लिम ओ। तो आप सच्चा इंसान मिदिक मो निखा लो तुम जेल उला सच्चाई सच्चा इंसान बनने के लिए कोशिश कीजिए दोस्तों। अगर आप सच्चा इंसान होंगे ना, तो आपको जिंदगी में ढेर सारी खुशियां मिलेगी, ठीक है। ये आरजे वीएली का दावा है, ठीक है। तो चलिए मैं आखिरी गीत के साथ आप सभी से विदा लेना चाहूंगी, और आखिरी गीत मैं सुनाना चाहूंगी जाने दिल में कब से है, तो लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाज में गाया गीत आज के लिए हिंदी का आखिरी खंड का आखिरी गीत जाने दिल में कब से है। तो मेरी तरफ से आप सभी के नाम और आरजे वीएली की तरफ से बाय बाय, टेक केयर, बे कू। और हम उम्मीद करते हैं जल्दी दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी, और जब तक हम नहीं मिलेंगे इस FM 100.7 पर दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखना, ठीक है। कभी भी किसी का बुरा मत कह बुरा मत करना। मी पुई तखा लो सोई लो उला ओ। सच्चा इंसान बनने के लिए कोशिश करेंगे हम सभी, है ना दोस्तों। तो चलिए इस खंड का आखिरी गीत मेरी तरफ से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर देहरादून पहुंची। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। राष्ट्रपति कल मुख्य अतिथि के रूप में देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए में पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है। मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ उन्होंने ये याचिका दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वो चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी की परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
1: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं। दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पर भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय

आकाशवाणी एज ओके एफ एम जो 100.7 पर आप सभी का हम स्वागत करते हैं दोस्तों. मैं हूँ आपकी आरजे मसो चुआंगी. आपने भी आरजे मिकी के साथ अपना वक्त बिताया था और अब हमारे साथ आधे घंटे के लिए हिंदी फिल्म की सुनने के लिए आप सभी फिर से तैयार हो जाइए. ठीक है, जैसा कि आप पहले भी करते थे. तो चलिए इस खंड को हम शुरू करेंगे. ये गुंडे मूवी का गीत है, तूने मारी एंट्रियां.

तो मेरी बैम बैम मूवी का गीत है और यहाँ जयलिजा होता हमें मैसेज मिला है और इन्होंने लिखा है हेलो आर जे एम एस गुड इवनिंग गुड इवनिंग जानिन ड्यूटी नॉर्मल थैंक यू थैंक यू तो अनिल मैम मुझे है अनिल सोमथ्रॉन नमस्ते जी आपको भी नमस्ते ड्यूटी नॉर्मल रनती है Hey, le, adupa po na ron ton siya. Bigong tehyanin, RJ, Dr. Buang, ihmana po hol. Hello, si Ron. Kakurdud, tut lang kami lang po, bigong tehyan, no? Anyways, agle git ki or ham jayenge, ye musafir movie ka git hai, ye ham gi dedicate karenge, bigong teh, ming moi teh, or jelal zama ki ne, thik hai? To chaliye sunte hai, ye hai, Saki Saki.

दरखास्त शिवाय मूवी का गीत है, और अगला गीत जो हम सुनने वाले हैं पाठशाला मूवी से है ऐ खुदा, और ये गीत हम स्पेशल डेडिकेशन करना चाहेंगे ये पीसी लरवत्सा सीपी वेंगलुन के फुटबॉल प्लेयर के लिए, ठीक है, जो जर्सी नंबर 28 पहनते हैं, हम उनके लिए खास करके डेडिकेट करेंगे। तो चलिए सुनते हैं, और ये है ऐ खुदा।

किताब पाठशाला मूवी से है और हम लगे जो सुनने वाले ये सनम तेरी कसम मूवी का गीत है तेरा चेहरा, और ये गीत आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं के लिए हम डेडिकेट करेंगे जो अभी पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं, कोई खाना भी पका रहा है, कोई गाड़ी भी चला रहा होगा, पता नहीं, एनीवेज कुछ भी हो ये आपके लिए हम और ये खास करके डेडिकेट करते हैं, ये है तेरा चेहरा।

आप सभी सनम तेरी कसम मूवी का गीत तेरा चेहरा सुन रहे हैं। और दोस्तों अब हमारे जाने का समय आ गया है क्योंकि आप सभी 5:30 बजे से आरजे रिंकू के साथ अपना वक्त बिताने वाले हैं। और चलिए ये आखिरी गीत जो हम सुनने वाले ये हैं सुनो ना, और ये गीत फिर से आप सभी के लिए जाता है।

आकाशवाणी एजो के एफ एम जो 100.7 पर दोस्तों आप सभी का हम फिर से स्वागत करते हैं। मैं हूँ आपकी आरजे मंसूम टोंगी। आपने अभी स्थानीय समाचार सुनिए और अब आधे घंटे के लिए हिंदी फिल्मी गीत आप सभी फिर से सुनने के लिए तैयार हो जाइए। और यहाँ हम सबसे पहले जो सुनने वाले ये थोड़ा क्लासिक है लेकिन मस्त गीत है। ये वारिस मूवी का गीत है, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम।

जी अंजलि, ये दिल से मूवी का गीत है। और दोस्तों, अगला गीत जो हम सुनने वाले हैं ये हाफ गर्लफ्रेंड मूवी का गीत है, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। और ये गीत आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं के लिए डेडिकेट करना चाहते हैं। आज फ्राइडे है, सब लोग शायद वीकेंड के मूड में भी हो सकते हैं। एनीवेज, आप एंजॉय कीजिए, ठीक है, और हो सके तो एफएम के जोर के साथ भी एंजॉय कीजिए। तो चलिए सुनते हैं, फिर भी तुमको चाहूंगा।

फिर भी तुमको चाहूंगा ये हाफ गर्लफ्रेंड मूवी का गीत है और दोस्तों अलग ही जब सुनने वाली ये खामोशिया मूवी का टाइटल ट्रैक सॉन्ग होगा खामोशिया और ये इस खंड का हमारा आखिरी गीत होगा ठीक है क्योंकि ये खंड 7:10 का था और उसके बाद आप लोग दिल्ली से रिले प्रोग्राम सुनने

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आई मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
1: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चले, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा, तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
1: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आई उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
2: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाती है तो इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोवेनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि वो 13 की संख्या बढ़कर के और 670 से ज्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है उनकी आवाज को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
1: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके

0: जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
1: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहां अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एम्यूनिटीज को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहां जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर की आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है, तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहां परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो, वहां लेकर के जाऊंगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूंगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ, और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्नाइज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति बढ़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया, उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की GDP में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा, तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर का कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है, होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है, निवेश विज रोजगार सजित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त तो टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रोक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन

0: से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा। और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णु प्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं?
0: देखिए इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं। हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहां एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखीगढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहां से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 50 से ज्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें AI तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था, वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। यह हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे, उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है, ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए ये आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया, 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पे काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने

0: दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सॉल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सबके प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च के 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से ज्यादा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन की आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने शब्द सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, सूर्य पे लटकाने तक का उपक्रम किया गया था। लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया, लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा ये 400 साल पहले भारत की मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या है, उस सबका रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूं कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि हमारे पूर्वज जो है 2500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा और न केवल भारत के प्रति, अभी तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई, राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम, क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था, देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो बायर कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द पंख फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोलू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आजादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए, इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की, अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े, जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए। और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सके, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाए, इसके लिए कॉम्पिटिशन आयोजित किए जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आजादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहां तक नहीं है। मुझे क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इंपॉर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़कर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से

0: विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया। भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं। आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है। लगभग 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है। और भारत जिस दिशा, जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है। और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप, छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
1: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, आजादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने, एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया। जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सके, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम, दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहां जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव
1: जी,
0: या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों के भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा, तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ

0: सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूंगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहां कहीं भी अवसर मिले, जैसा भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़े। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थयात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

आकाशवाणी आइजो के फिल्म 100.7 पर आप सभी का दोस्तों हम फिर से स्वागत करते हैं और मैं हूं आपकी आरजे मसूम चौंगी। और दोस्तों ये आज का हमारा आखिरी खंड रहेगा 9:30 बजे तक और हम आशा करते हैं कि आप हमारा साथ देते रहेंगे और इस खंड पर आप

हमारे मन पसंद हिंदी फिल्मी गीत सुनने वाले हैं। जी हाँ, ये आशीष चॉइस का सेगमेंट है। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं सनम पुरी की आवाज में, और ये है पाहिलिया।

आंखों ही आंखों ने मिकी वर्स मूवी से है और यहाँ मैं मुझे का मैसेज मिला इन लेल है सो क्लों इतान लेल दिन पुए फल कौन वे ना इतान रोंती आ लेल दिन पुए क्या ने ना जे प्ले ले तो खाना माता ने लोग ऐसा वे जों सों ताने आज जे जों सों ताने रोंती ने लेल दिन पुए फल कौन वे लाइट सोनीन vi kumte hian in arche misse mezen light and avo kurom ve tu na kati da utso to ron dia lo la men pui ve sham sham la o so ni hitendr das ji se vi aya i don likha hai hello rjg good evening rain and rain only shayad bahut barish ho rahi hai wahan theek hai yahan bhi thodi hui thi lekin ab dhal gayi hai to chaliye agle geet ki aur chalte hain ye hai rajana movie se nazar laaye

नजर लाइए रांझणा मूवी से था, और अगला गीत जो हम सुनने वाले हैं ये हम केके की आवाज में सुनेंगे, प्यार के पल, और ये गीत आप सभी के लिए जाता है।

गुरु मूवी का गीत तेरे बिना सुन रहे हैं, और हमारा आज का हिंदी का आखिरी गीत होगा मेरा चांद मुझे आया है नजर, और ये गीत आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं के लिए जाता है। ठीक है, तो आज वीकेंड भी शुरू हो रहे हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, अपना एंजॉय कीजिए, लेकिन साथ ही सुरक्षित भी रहिएगा। ठीक है, तो आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और सभी को शुभ रात्रि।